0: FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
1: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
2: FM247365
3: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
2: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Shifa wahan se shuru hoti hai jahan kudrat muskurati hai. Schwabe Single Remedies. कुदरत के अनमोल खजानों और जर्मन महारत का शाहकार जिन्हें आप तक 75 सालों से पाकिस्तान में पहुंचा रहे हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो।
2: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।
3: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 100 Like us on Facebook.com/FM247365 FM 247365

0: सर इतना भारी जानवर गिराया और गोश्त की कटाई भी आपकी मर्जी की।
1: तो ये लो कैश पेमेंट तुम्हारी मर्जी की।
0: कैश नहीं चाहिए आपके हाथ से, पेमेंट सिर्फ रात से।
2: तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड बनाएं और पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ बराह रास्त।
3: सामने वालों का बकरा भी आ गया, बाबा चले ना मंडी।
1: अभी चलते हैं।
4: पैसे रख लिए?
1: किस लिए, अब तो मंडी में भी पेमेंट होती है बराह रास्त।
2: इस बकरीद पर कैश ले जाने के झंझट से बचें और रास्ते से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड स्कैन करें और पैसे ट्रांसफर करें बिल्कुल फ्री। तो कुर्बानी के लिए पेमेंट हाथ के हाथ बराह रास्त।
0: वाह भाई, गाय वगैरह सब बिक गए, कैश रख लिया ना इबादत से।
1: कैश अब जेब में नहीं, बराह रास्त बैंक अकाउंट में। पेमेंट लेता हूँ सिर्फ रास्त से, यही है कैश की पक्की हिफाजत।
2: तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड बनाएं और पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ बराह रास्त।
3: सामने वालों का बकरा भी आ गया, बाबा चले ना मंडी।
1: अभी चलते हैं।
4: पैसे रख लिए?
1: किस लिए, अब तो मंडी में भी पेमेंट होती है बराह रास्त।
2: इस बकरीद पर कैश ले जाने के झंझट से बचें और रास्ते से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड स्कैन करें और पैसे ट्रांसफर करें बिल्कुल फ्री। तो कुर्बानी के लिए पेमेंट हाथ के हाथ बराह रास्त।
5: FM 100's टाइम चेक, इट्स 10 AM। This program was brought to you by हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओ। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का। एंड
6: इज्तिमाई कुर्बानी, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल।
5: एंड
7: अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
5: एंड
8: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
9: 24 सिंगल रेमेडीज तैयार की जाती हैं 100% ऑर्गेनिक अड्डा से, जो मसनूई खाद और पेस्टिसाइड से बिल्कुल पाक है, जिसे निखारा है जर्मन साइंस ने। 24 सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, 75 सालों से आपका एतमाद।
10: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ FM 100، 31 سال FM 100، آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
11: السلام علیکم پاکستان،
12: دس از یور میوزک۔

0: 10:45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाव, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 100, like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
1: नई स्कीम,
2: कमिटी,
3: प्लाट बनाए फरो।
2: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
1: नई स्कीम,
2: कमिटी,
3: नाट बनाए फरो।
2: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: Like us on facebook.com/FM247365.

0: FM 100's time check. It's 12 noon.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM 247365. FM 100.
3: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
2: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.

यस एवरीबॉडी, तो हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज। और अब जबकि बाकायदगी से आगाज हो ही चुका है तो ऑब्वियसली हम आपको बताएंगे तरीका कार के कैसे आप भी बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे, और इस तरीके कार के जरिए आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, अपने हाल हवाल बता सकते हैं और आप सबका दिन कैसा गुजर रहा है, जो कि गर्मी के साथ ही, बेसिकली तो हम सबका दिन गर्मी के साथ ही गुजर रहा है और यही है इस दिन की ताजा तरीन सूरत हाल। तो उठ गए हैं अभी या फिर उठे थे फिर सो गए हैं, छुट्टी का दिन है या फिर नहीं, भाई कोई छुट्टी का दिन नहीं है, हम तो अपने वर्किंग प्लेस पर मौजूद हैं। तो क्या हाल है वाले भाई आप लोग सबके, हम जरूर जानना चाहेंगे। और वैसे भी आज सैटरडे का दिन है, तो सैटरडे का दिन हमारे लिसनर्स का दिन ही होता है और इस दौरान हम आपसे खूब सारी बातें कर रहे होते हैं और जान रहे होते हैं कि भाई आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कुछ नया हुआ जिंदगी में या वही पुरानी जिंदगी। अच्छा वैसे देखा जाए तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि जिंदगी में कोई मतलब आउट ऑफ द बॉक्स चीज हो जाए या कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स आ जाए, वरना ऑलमोस्ट हम सब वैसे ही जिंदगी गुजार रहे हैं। अक्सर कोई पूछते हैं ना कोई नई ताजी है, कहते हैं यार नहीं, नई तो कुछ नहीं है, वही पुरानी वाली चल रही है, कोई नई ताजी आई नहीं है। तो आपकी जिंदगी में भी यही सूरत हाल है कि कोई नई ताजी नहीं है, सारी पुरानी पुरानी बातें ही चल रही हैं, या फिर कोई नई ताजी आने वाली है, इट्स अराउंड द कॉर्नर। तो जब तक आप हमें अपने हाल हवाल बताने वाले ही हैं, जब तक हमें एक अदर ट्रैक को शामिल कर लेते हैं और फिर इसके बाद

0: तो एक और ट्रैक के साथ हम आ गए वापस। हमने कहा भाई बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ अगर ट्रैक्स भी चलते रहें तो भाई वो जो बातों का मजा है ना वो मजीद दुबाला हो जाता है। और भाई आज है 16th of May, सो हैप्पी बर्थडे टू यू। अगर आज आपकी सालगिरह है या फिर कोई और खास दिन है आज आपकी जिंदगानी का, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि अगर कोई खास दिन है तो उसको मुबारकबाद देना जरूर बनता है। और एक कुछ भी कहें, कोई आपको मुबारकबाद दे या ना दे, लेकिन अगर आपको पता हो कि वो कोई खास दिन है तो आपको खुद ही कितनी ज्यादा खुशी हो रही होती है ना उस दिन को मद्देनजर रखते हुए। तो बिल्कुल भाई, इसलिए हम तो आपको रोजाना की बुनियाद पर मुबारकबाद देते हैं, चाहे आपकी जिंदगी का कोई भी खास दिन हो, आपकी सालगिरह हो, एनिवर्सरी हो, या फिर कोई स्पेशल थिंग जो आपकी जिंदगी में हुई हो, तो भाई वो आपको बड़ी मुबारक हो। इसी के साथ साथ बकरा ईद इज ऑल्सो अराउंड द कॉर्नर, उसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, जानवर नजर आना शुरू हो गए हैं जगह जगह पर, साथ ही साथ गर्मी की शिद्दत भी बहुत है, तो बहुत सारी जगहों पर अभी तक जानवर इस वजह से भी नहीं आए हैं कि जरा मौसम बेहतर हो और तब जानवरों को लाया जाए। आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी नाइस ऑप्शन, बिकॉज गर्मी में ना जिम्मेदारियां जरा ज्यादा बढ़ जाती हैं और हर किसी के पास ऐसी यू नो प्रॉपर कोई कवर्ड एरिया भी नहीं होता है जिसमें जो है वो अपने जानवरों को रख सकें या फिर उसके लिए तैयारी की जाए। वैसे ऑब्वियसली सब बड़ी ही एफर्ट्स करते हैं अपने जानवरों को महफूज मकाम पे रखने के लिए, लेकिन अगर एक दो दिन वेट किया जा सकता है तो आई मस्ट से कि जरूर करें। और जैसे कि हमने आपको प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंगली बताया भी था कि 20 मई के बाद कराची के मौसम में थोड़ी सी तब्दीली की पेशनगोई है, यानी कि धूप की शिद्दत में भी कमी होगी, दर्जा हरारत भी कम रहेगा, तो ये अच्छा है कि दो तीन दिन का इंतजार है वो कर लें और उसके बाद आप अपने जानवरों को ले आएं, ताकि जो बहुत ज्यादा गर्मी है जो बेचारे उनके लिए भी जरा मुजर है तो उससे जरा सा बचत हो जाएगी। तो बस दो तीन दिन रह गए हैं, उसके बाद कराची का मौसम अच्छा होने की पेशनगोई मौजूद है। और इसी के साथ साथ मेरे पास ब्रेक मौजूद है जिसकी जानिब हम जा रहे हैं और आते हैं वापस ट्रैक के साथ।
1: परेशानियां खत्म करता है, इसका सरूर हमेशा रहता है, ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें। मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया। FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM 247365

All right, G. So I am back. Guftgu ka silsila aap logon ke saath jari hai. I am looking forward for your messages. To aap jaldi jaldi hume message kare. Hamare program ka hissa bane. Aapke pasand ke tracks ko bhi hum shamil kar rahe hain. Rashid Khan ne humse ek track ki request bhi ki hai, jise hum shamil karenge. So deal done rahi. Aapke pasand ke tracks ko bhi hum shamil karenge. Usi ke saath saath guftgu ka silsila to aap logon ke saath hamara jari hi hai, kyunki aapka aur hamara saath hota hai do tak. To ye saath qaim udaim hai. फिलहाल हम चलते हैं एक अदद ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद आते हैं वापस और करते हैं आपसे मजीद गुफ्तगू.

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Shifa wahan se shuru hoti hai jahan kudrat muskurati hai. Schwabe Single Remedies. कुदरत के अनमोल खजानों और जर्मन महारत का शाहकार जिन्हें आप तक 75 सालों से पाकिस्तान में पहुंचा रहे हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: हंडे. लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.

यस माय फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ वापस और आप सब सोच रहे होंगे कि आरजे फातिमा खान कहाँ चली गई। 12 से 2 के दरमियान हमारा और उनका साथ होता है और ये साथ अधूरा कैसे रह गया, तो इसलिए मैं फौरन से आ गई हूँ जी। और वक्त का मैं मुकाबला सकते ही तो मैं जानती हूँ, लेकिन बिकॉज ऑफ वर्क एंड वर्क, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वर्क जो कि एफएम 100 पे चलता रहता है, तो इसीलिए कुछ देर के लिए हम आपसे हो गए थे जुदा, लेकिन आ चुके हैं वापस। हमें जरूर वो मैसेज करती है, कहती है सलाम कैसी।

और वक्त का मैं मुकाबला सकते हैं तो मैं जानती हूँ, लेकिन बिकॉज ऑफ वर्क एंड वर्क लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वर्क जो कि एफएम 100 पे चलता रहता है, तो इसीलिए कुछ देर के लिए हम आपसे हो गए थे जुदा, लेकिन आ चुके हैं वापस। हमें जरीन वो मैसेज करती हैं, कहती हैं सलाम कैसी हैं, बहुत सारा प्यार और दुआ आपके लिए। थैंक यू सो मच जरीनूर, इसी तरह हमें प्यार करती रहें और दुआ में याद रखें, बहुत शुक्रिया आपका। रशीद खान ने कहा है अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। कहते हैं मैं गुड, लंच में सब्जी है। आपने थर्सडे को भी अपना लंच लिसनर्स को नहीं बताया था। ओके, और एक ट्रैक की रिक्वेस्ट की है, बिल्कुल ठीक है। सवाल आपने सही किया कि थर्सडे को भी आपने अपना लंच नहीं बताया था। अच्छा, पता थर्सडे को मेरे पास लंच में काफी वैरायटी थी। आई हैव काठियावाड़ी छोले और उसी के साथ वी हैव बिरयानी ऑल्सो, सो ये था मेरे लंच में। आई थिंक कुछ और भी एक चीज थी, यस आई हैव बन कबाब ऑल्सो। सो उस दिन काफी सारी वैरायटी हमारे पास लंच में मौजूद थी। आज मेरे लंच में क्या है? आज मेरे लंच में कढ़ाई है। तो अब मेरा थर्सडे का लंच ही हो गया। फ्राइडे को मैंने पता लंच में क्या खाया था, फ्राइडे का भी बता दीजिए रशीद खान आपको, वो मैंने नूडल्स खाए थे। तो ये देखें, तीन दिन का लंच मुझे याद है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अपने सुनने वालों को जो है अपना लंच हम बताते चलते हैं, और उसी के साथ साथ हम ट्रैक की जानब चलते हैं। रशीद खान ने की थी हमसे इसकी रिक्वेस्ट, सो एंजॉय।

0: It's 1:45 PM. This time check is brought to you by
1: Aasani se paise badhao with Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
0: This program is brought to you by
2: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
3: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत.
4: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं.
5: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ.
4: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं. सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या.
5: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी. अपना BMI चेक करवाएं,
3: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें. वेट से आगे का सोचें.
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
7: Don't miss out. Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
8: Join Fatima Khan.
7: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
8: Midday break a blast.

Yes, my friends, I am back. और रशीद खान के पसंद के ट्रैक को हमने शामिल कर लिया है. और इसी के साथ साथ भाई आज कौन कौन से दिन मनाए जाते हैं जरा इस पर भी गौर व फिक्र करते हैं और आप लोगों को बताते हैं. तो भाई आज ड्राइंग डे मनाया जाता है एंड आई लव ड्राइंग ऑल्सो बट आई एम नॉट अ गुड आर्टिस्ट. मुझे ड्राइंग का शौक तो है बट मैं अच्छा सा कुछ ड्रॉ कर नहीं पाती. मतलब कर लेती हूँ अगर कोई पिक्चर देखकर कुछ ड्रॉ करने का मौका मिल गया तो कर लिया. लेकिन जो वैसे बड़े आर्टिस्टिक माइंड होते हैं जो बैठे बैठे कुछ भी ड्रॉ कर देते हैं ना, आई मस्ट से दे आर वेरी वेरी नाइस एंड दे आर हैविंग अ वेरी यू नो स्ट्रांग ब्रेन ऑल्सो. जो लोग बैठे बैठे बहुत अच्छी सी पिक्चर्स बना लेते हैं, कुछ भी चीज को ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें इंटरेस्ट की भी बात होती है. वैसे मुझे शौक है. आई थिंक मुझे लगता है कि जब आप फ्री हैं तो उसमें आप ये एक्टिविटी करें तो उससे आपका ब्रेन बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत अच्छा महसूस करते हैं. तो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी नाइस एक्टिविटी. ड्रॉइंग हो गई या कलरिंग हो गई और अगर आप करते हैं तो अच्छा है. मैं तो किसी चीज को देखकर बना लूंगी हाँ अगर मौका मिले, बट ये नहीं कि बहुत परफेक्शनिस्ट हूं, बहुत अच्छा बनाती हूं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है. हालांकि लड़कियां ऐसे बड़ी अच्छी होती हैं ड्राइंग वगैरह में और बस मैं तो ठीक ही हूं, ये नहीं कहूंगी कि बस गुजारा है. गुजारा हो गया. ऑलराइट डियर, आज इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट है. ओ माय गॉड, लाइट का जब भी जिक्र आता है ना मेरी जुबान से सिर्फ यही जुमला निकलता है कि जी लाइट इज लाइफ. और ये हकीकत है कि भाई ये जो लाइट है ना ये जिंदगी है, क्योंकि इसके बगैर जीना इज इम्पॉसिबल. और इस चीज का आपको अंदाजा तब होता है जब आपके घर में लाइट जाती है, तब आपको उसकी अहमियत होती है और आप रियलाइज करते हैं कि वाकई में किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि लाइट इज लाइफ, क्योंकि इसके बिना आप कुछ करने के काबिल नहीं रहते. ना तो आपकी अंदर ताकत बचती है, ना आप कुछ हैप्पीली कर सकते हैं, बिकॉज लाइट आपको हर चीज प्रोवाइड करती है. सो भाई लाइट इज लाइफ, इसका इंटरनेशनल डे मनाया जाता है आज के रोज. इसी के साथ साथ आज नेशनल बारबेक्यू डे भी मनाया जा रहा है और बारबेक्यू बनाने का तो दिन बस आने ही वाला है, क्योंकि बकरीद के बाद जो प्लानिंग होती है ना सबकी वो बारबेक्यू को ही लेकर चल रही होती है कि जी बारबेक्यू पार्टी किस दिन करनी है, कौन कौन से नए नए मसाले मैरिनेट करने हैं. तो भाई आज के काफी दिन जो है ना वो मेरे लिसनर्स की करंट सिचुएशन से मिलते जुलते हैं. ऑल राइट, और वक्त भी तेजी से गुजर रहा है तो चलें जी जल्दी से एक अदर ट्रैक को भी शामिल करते हैं और इसके बाद वापस आते हैं. सो एंजॉय.

यस एवरीबॉडी, सो आप लोग इस ट्रैक को एंजॉय कर रहे थे और मैंने इतनी सोचा कि मैं इस ट्रैक को शामिल कभी कभी करती हूँ, तो मैंने कहा ठीक है जी आज इसे भी शामिल करते चलते हैं, क्योंकि आज हमने आपके साथ थोड़ा कम वक्त गुजारा बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ मसरूफियात, बट इसी के साथ साथ आप लोगों को बताते चलेंगे इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मेरी मंडे वाले दिन, सो ऑब्वियसली वील डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टॉकिंग जो कि हम आपसे करते हैं मंडे टिल सैटरडे। अच्छा भाई, आज बहुत सारे दिन मनाए जाते हैं, तो एक और दिन भी आपको बता देते हैं, नेशनल लर्न टू स्विम डे भी है और स्विम इज वेरी वेरी नाइस। आपको पता है ये कितनी हेल्दी एक्टिविटी है अगर आप इस एक्टिविटी को करते हैं या आपका फेवरेट काम है। अच्छा मुझे ना बड़ा शौक है स्विमिंग वगैरह करने का एंड आई रियली लाइक पानी, पानी मुझे बहुत पसंद है चाहे वो समंदर है चाहे वो पूल है, बट स्विमिंग इज ट्रिक, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, आपको अपनी बॉडी को बहुत हल्का छोड़ना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, शौक की बात है, मुझे शौक बहुत है लेकिन मैंने सीखा नहीं क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है और मैं अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाती। बट द थिंग इज दैट, मैं आपको एक बात बताऊं, स्विमिंग को मद्देनजर रखते हुए कुछ ऐसी स्पेसिफिक टिप्स हैं जो आपको जरूर आनी चाहिए ताकि आप खुद को भी बचा सकें और कभी ना कभी किसी और को भी बचा सकें। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक दो ऐसी टिप्स, एक दो ऐसी ट्रिक्स हैं जो आपको जरूर सीखनी चाहिए व्हाइल यू आर डूइंग स्विमिंग। तो ये आज इसका नेशनल लर्न टू स्विम डे मनाया जाता है, बट आई मस्ट से कि सबको, हम सबको लर्न करना चाहिए क्योंकि ये बहुत जो है ना वो फायदेमंद है कि कभी आप किसी मुश्किल में हो, किसी ट्रबल में हो, तो आपको खुद को बचाना जरूर आना चाहिए ऐसी बहुत सारी चीजों में। लेकिन मैं जरूर लोगों को अप्रिशिएट करूंगी जिन लोगों को ये सारी चीजें आती हैं या वो लोग जो इस चीजों को सीखते हैं, तो जरूर सीखें बिकॉज एप्रिसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लर्निंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग जरूर इस चीज को सीखिएगा क्योंकि अभी जो टाइम है ना ये मई से लेकर अगस्त तक का ये टाइम होता है पिकनिकों का, तो बिल्कुल आप लोग पिकनिक्स करें, एंजॉय करें अपने इस टाइम को तो इस टाइम को एंजॉय करने के साथ साथ मैं यही मशवरा आप लोगों को दूंगी कि इसी के साथ साथ आप ना कुछ नए स्किल्स भी जरूर लर्न करें, दैट इज वेरी वेरी गुड। और इसी के साथ आपसे लेंगे हम इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी मेरी आपसे कल फिर सेम प्लेस सेम टाइम। तो रखें अपना भरपूर ख्याल, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।

0: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
1: नई स्कीम,
2: कमिटी,
3: प्लाट बनाए फरो।
2: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: This program is brought to you by
5: Hyundai लाया है Elantra 1.6 Special Edition और वो भी upgraded features.
4: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 2:45 PM. This time check is brought to you by
1: Aasani se paise badhao with Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
0: This program is brought to you by
2: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: क्रॉस।
1: आज मंडी में बकरे और गाय आपसे कह रहे हैं कुछ अलग बात कि कुर्बानी के जानवरों की पेमेंट होगी बराह रास्त। तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड स्कैन करें और पेमेंट करें हाथ के हाथ बराह रास्त।
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: It's 4:45 PM. This time check is brought to you by
1: Aasani se paise badhao with Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Like us on facebook.com/fm247365 fm247365

0: This program is brought to you by
1: Har Remittance par shandar inaamat jeetne ka mauka paave.
2: Bank Al Habib, rishta bharose ka.
3: And Ijtimai Qurbani, Alamgir Welfare Trust International.
2: And
4: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
2: And
5: agar aap hain in-drive car, bike ya rickshaw driver to 4 mai se 12 july tak weekly challenges mein hissa le.
2: And
6: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
7: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे. होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अपराध के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
8: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
9: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
10: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स।
1: एंड
2: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
1: एंड
3: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
4: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
5: हमने अपने आप को 3 बार मौत देखा।
6: टाइम से मनु ऐसे ही के मैं हूं, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
7: फिर उन्होंने साडियो वीडियो बनाईया, सानू मारिया, सानू कुटिया।
4: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
8: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
4: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क्याम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी। एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकदसा की ज्यारत को जाने वाले जायरीन भी कानूनी जराए इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें। ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान।
9: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100 like us on facebook.com/fm247365
10: fm247365 Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
11: Only music, no RJ talk.
10: This is F.

0: एयर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: इज्तिमाए कुर्बानी बकरा 33,950 रुपए, गाय फी हिस्सा 29,950 रुपए, बकरी 25,950 रुपए, मुकम्मल गोश्त घर लेकर जाइए। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल 0330-153-153-4 और 5।
0: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: इज्तिमाए कुर्बानी बकरा 33,950 रुपए, गाय फी हिस्सा 29,950 रुपए, बकरी 25,950 रुपए, मुकम्मल गोश्त घर लेकर जाइए। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल 0330-153-153-4 और 5।
2: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
3: नई स्कीम,
4: कमिटी,
2: प्लाट बनाए फरो।
4: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें।

0: 15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
2: हर शोबे सिंगल रेमेडी का सफर शुरू होता है मखसूस हर्बल बागात से, जहां बड़ी एहतियात से काश्त की जाती है। जर्मन साइंस से निखरा ये मयार आप तक पाकिस्तान में पहुंचाते हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो शोबे सिंगल रेमेडीज, जिस पर पाकिस्तान करता है 75 सालों से एतमाद।
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: इज्तिमाई कुर्बानी बकरा 33,950 रुपए, गाय फी हिस्सा 29,950 रुपए, बकरी 25,950 रुपए, मुकम्मल गोश्त घर लेकर जाइए। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल 0330153153 4 और 5।

0: शर्ट। हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें।
1: इज्तिमाई कुर्बानी बकरा 33,950 रुपए, गाय फी हिस्सा 29,950 रुपए, बकरी 25,950 रुपए, मुकम्मल गोश्त घर लेकर जाइए। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल 0330-153-153-4 और 5।
2: कुदरती अज्जा इंतहाई नाजुक होते हैं, इसीलिए श्वाबे जर्मनी दुनिया का जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस्तेमाल करता है ताकि अज्जा का खालिसपन महफूज रहे और तासीर में इजाफा हो। श्वाबे सिंगल रेमेडीज, जर्मन इनोवेशन और हमीद जर्नल होम्योपैथी पाकिस्तान, जिस पर है पाकिस्तान का 75 साल एतमाद।

0: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
1: इज्तिमाई कुर्बानी बकरा 33,950 रुपए, गाय फी हिस्सा 29,950 रुपए, बकरी 25,950 रुपए, मुकम्मल गोश्त घर लेकर जाइए। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल 0330-153-153-4 और 5।
0: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
2: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
3: नई स्कीम,
4: कमिटी,
5: प्लाट बनाए फरो।
6: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
7: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें।
8: किसने कहा था पैसे बचा?

0: हायर करना है नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
1: इज्तिमाई कुर्बानी बकरा 33,950 रुपए, गाय फी हिस्सा 29,950 रुपए, बकरी 25,950 रुपए, मुकम्मल गोश्त घर लेकर जाइए। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल 0330-153-153-4 और 5।
0: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
1: इज्तिमाई कुर्बानी बकरा 33,950 रुपए, गाय फी हिस्सा 29,950 रुपए, बकरी 25,950 रुपए, मुकम्मल गोश्त घर लेकर जाइए। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल 0330-153-153-4 और 5।
2: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
3: नई स्कीम,
4: कमिटी,
5: लाड बनाए फरो।
4: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: इज्तिमाई कुर्बानी बकरा 33,950 रुपए, गाय फी हिस्सा 29,950 रुपए, बकरी 25,950 रुपए, मुकम्मल गोश्त घर लेकर जाइए। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल 0330-153-153-4 और 5।
6: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओ। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का। एंड
1: इज्तिमाई कुर्बानी आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल
6: एंड
7: हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स।
6: एंड
8: अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले।
6: एंड
9: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल
6: जा। 100 FM।
10: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फिकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
6: Yeh paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: FM 100 ट्रैफिक अपडेट।
1: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, FM 100 पर ट्रैफिक अपडेट के साथ मैं हूँ फरोख इजहार। शहर कराची की सड़कों और शाहराओं पर ट्रैफिक की इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह है। FM 100 को मिलने वाली इत्तला के मुताबिक वो तमाम ट्रैफिक जो इस वक्त आ रहा है सिंगर चौरंगी से ग्रुप चौरंगी और सिंगर चौरंगी से वो ट्रैफिक जो मुर्तजा चौरंगी और दाऊद चौरंगी की जाने आ रहा है उस पर ट्रैफिक का दबाव काफी ज्यादा है। जबकि जेल चौरंगी से हसन स्क्वायर और वहां से नीपा चौरंगी की जानब जाने वाले ट्रैक पर भी ट्रैफिक का काफी ज्यादा दबाव देखा जा रहा है। वो तमाम लोग जिन रास्तों पर सफर करना चाहते हैं अपने टाइम को मैनेज करते हुए आए ताकि बर वक्त अपनी मंजिलों पर पहुंच सके। मजीद अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए FM 100 पाकिस्तान।
0: दिस ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। FM 100's time check. It's 7 p.m. This program was brought to you by
2: Har Remittance Par Shandar Inamat Jeetne Ka Mauka Paao.
0: Bankal Habib, Rishta Bharose Ka.
3: And Ijtimai Qurbani, Alamgir Welfare Trust International.
0: And
4: Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स।
0: एंड
5: अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
0: एंड
6: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
7: हर शोबे सिंगल रेमेडी सख्त तरीन क्वालिटी चेक से गुजरती है ताकि खालिसपन और असलियत बरकरार रहे, क्योंकि जब बात सेहत की हो तो समझौते की कोई गुंजाइश नहीं। शोबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान 75 साल से काबिले एतमाद।

0: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
2: नई स्कीम,
3: कमिटी,
4: प्लॉट बनाए फरो।
5: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
0: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज़।

0: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे। होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
1: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
2: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: पाकिस्तान
1: ट्रेडिंग ट्रस्ट मी ब्रो
2: नई स्कीम
3: कमिटी
4: लाड बनाए फरो
5: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
6: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
7: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है अब जंग मैदाने जंग में नहीं हमारे जहनों में लड़ी जा रही है अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं मालूमात है और निशाना हम सब रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है वो ढूंढता है कमजोर लम्हे बेरोजगार नौजवान जरूरतमंद खानदान फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब बड़ी नौकरी तेज दौलत बैरून मुल्क सफर और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं जिनसे बदमनी खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है आपकी तस्वीरें पहचान फोन सब कुछ खतरे में डाल देता है तो याद रखिए किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए कोई मशकूक चीज कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए क्योंकि हर लफ्ज हर क्लिक हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा फैसला आपके हाथ में है
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया
9: facebook.com/fm247365
10: Today's hit music.

0: फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर। इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो।
2: नई स्कीम,
3: कमिटी,
4: प्लाट बनाए फरो।
5: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: किसने कहा था पैसे

0: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
2: नई स्कीम,
3: कमिटी,
4: प्लॉट बनाए फरो।
5: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में 50,000 या ज्यादा इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका भी पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
0: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
6: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफादे आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
9: FM 24/7/365

0: हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।
1: FM 247 365 FM 100
2: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
3: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान
4: listening to the greatest radio station

हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफाद आमा के लिए वजारत इत्तला

0: हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।
1: This program is brought to you by
0: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
1: Like us on facebook.com/fm247365.
2: Back to back. Only music, no RJ talk.
3: Only music, no RJ talk.
2: This is F.

0: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga
1: aur bhul ja. Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
0: This program is brought to you by
1: Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition aur wo bhi upgraded features.
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल कर

0: This program is brought to you by
1: Hyundai लाया है Elantra 1.6 Special Edition और वो भी upgraded features.
2: पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कूट उसका नौजवान तबका है. पाकिस्तान की 60% आबादी 18 से 35 साल की उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है, जो एक मुनफरिद आबादियाती सरमाया है. नौजवान हमारी मईशत की धड़कन और हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं. अहम उनके खिलाफ एक खामोश जंग जारी है और वो है मुनशियात का बेहतर इस्तेमाल. मुनशियात फरोश माफिया अच्छी तरह से जानती है कि कहां वार करना. हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां उनका हदफ हैं, जहां वो नौजवान जहनों को खतरनाक नशा आवर अशिया से गुमराह कर रहे हैं. यही वो मकाम है जहां इंसदाद मुनशियात फोर्स ANL वाजे मकसद और मजबूत इरादे के साथ मैदान में

0: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: FM 247 365

धक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं धक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं धक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं धक सा।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, राहिबिया खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, across Pakistan. This is FM 100.
2: Assalamu alaikum, Pakistan.